0: कसोल भारत की एकमात्र ऐसी जगह जहाँ इंडियन टूरिस्ट से ज्यादा इसराइल के टूरिस्ट घूमने आते हैं।
1: कसोल में आजादी से पहले इसराइली आके बस गए। उन्होंने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बसा ली। उस कॉलोनी का सर हमें आज साफ दिखता है कसोल में, जिसकी वजह से इसको मिनी इसराइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉलोनी आज काफी हद तक बहुत बड़ी हो चुकी है।